पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए, हुरमत सुनो अगलियो वजो पे दूना खाए, खसमे करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए, वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए, जिसता दिता खावना तिस कहिया सा बास, नानक अपना चले नाल खसम।

पौड़ी नानक अंतन जपनी हर तां के परवार आप कराए साक्ति पर आप कराए मार इकना गली जंजीरियां तुरी चरे बिस्यार आप कराए करे आप हों कैसे हों करी पुकार नानक

पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबा।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और ना याहे महात्म मैं अवतारे उजागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियाओ एह पद्धत ते मत चूक है रे मान भेद विभेद ना जान बियाओ प्रताक्ष हृदय गुरे अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ फुरमान तेरा सिरै ऊपर फिर ना करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझै ते निस्तार बंदे बंदगी एक तियार साहिब रोस धरौ के प्यार नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार कह कबीर गुलाम घर का जी आए पावै मार कबीर मोहे मरने का चाओ है मराओ ता हर कै द्वार मत हर पूछै कौन है परा हमारे बार जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तार तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै गगन दमामा बाजेओ परयो नीसन काओ खेत जो मांडेओ सूरमा

पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए,

0: तेरा नाम सत है, नाम सत है श्री वाहे गुरु।
1: पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक ना जपन करतबा, जिया दुर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा कर पला, तेरे कर नंद वदाई तुद कर, मन मता तेरे अपना आप जर।

चौथा हार के जान सत गुर सत पुरखा बिना ओंकाराओ गुर पासे हम कीरे किरम सत गुर सरणाई कर दया नाम परगासे मेरे मीत गुर देव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाई ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भउ करिया ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरी शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दासया।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय पारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ, ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੀ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਰਹਾਉ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ

एक ओंकार श्री वाहि गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चौने चौने सत्रो हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जू करियहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बाप तरा, काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सर नी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मारे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहारे हो, ताकि ताप तनक मह हारे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फासते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर

मान प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन त्रिपतानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन त्रिपतानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाव करनन पूर रहयो जस स्वामी कलमल दोख सगल माल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूरन अविनाशी

रिद्ध सिद्ध निद्ध अवतार अमरन है, चरण सरन गुर नाम निह काम ताम। भगत जुगत कर तारन तरन है, चरण सरन गुर महिमा अगाध बोध।

महाआनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। जब ते दर्शन पेटे साधु पले दिनस ओए आए। महाआनंद सदा कर कीर्तन

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाद बिख बिख खाई, माया मो परम पै पूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशादशाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दाविसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशादशाह, जिस पास बैठिया सो

और क्या जाने को रहा सच्चा साहिब सच तू मेरे शाह तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिया सा दूजा नहीं को सबना विच तू वरतदा शाह सब तुझे त्यावहे दिन रात सब तुझ ही थावहो मांग दे मेरे शाह तू सबना करहे एक दात सब को तुझ ही विच है मेरे शाह तुझते बाहर कोई ना है

थोड़ी ना उतर निरंकार है न ले नरक न जाइए जियो पिन सब ती सदा देखा जय गवाइए जे लोड़ है चंगा अपने

संभाले सबना जिन करता है करना किया चिंता फे करनी ता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान भाग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।

रइए महले चौथे के एक ओंकार सात गोर पर था एक मान पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण साध गावो

0: अन पो उन मान अकल लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मिटिया जन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठोकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पायो।
1: संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनाह मुफटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरयो जग जस धूर बजायो गुरु रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक ध्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध राम निधान रिद्ध सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे।

भगत परवा प्रेत पुबलेना हुट्ट सतगुर शब्द अथा अमें तारा रस गुट्ट मत माता संतोख पिता सर सह समायो अयुनी संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर

0: अभगत अगोचरे अपर पर मन गुर शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चरै तैं जगत उदारन पायो।
1: जगत उदारन नव निदान भगतें भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखे निवारन सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान मत बल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पए सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बुझायो। सेज सदा सह शवान संतोख सराय चो सदा सील सुना सोहै गुरु शब्द समाचरयो नाम टेक संगात बोहै आजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवास गुरु रामदास कल उचरै तो सहज सरोवर बास।

सतगुर नाम एक लिव मन जपे धड़ो, तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो, तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तार, सब दुरद विचार काम क्रोध खो वह जियो, जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता, एन सत आन तावे पलक न सो वह जियो, जाको देख तदरिदर जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल तो वह जियो, सत गुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो।

0: अरदास राखू सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गोरे रामदास राखू सरनाई।
1: सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाइ, दर्शन परसियै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाइ, होवै सिफत खसम्मदि, नूर अर साहु कुर साहु चटियै, तुद डिठी सच्ची पाति साह, माल जन्म जन्म दी कटियै, सज्जन सच्चा पाति साहु, सिर साहां दै साहू,

करत पाप अबहारा, पै मरबे को बिसरत नाहन, तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुकत के कारण, देह दिस कौ उठ

0: नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझता है। सतजुग रह संतो का धर्म गैरथवा हो, त्रेतै रथ जतै का जोर गैरथवा हो, द्वापर रथ पै का सत गैरथवा हो, कल युग रथ गन का कूड़ गैरथवा हो। महला पहला।
1: साम कहे सितंबर स्वामी, सच में अच्छा साथ रहे, सबको सच समावे।

पार कूड़ बोल करे आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका ते तुति का खाई हाथ छुरी जग कसाई।

दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इस्नान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल।